ष्टेयाता तवा चौता सौवाने हके वेनष्टेयाता न एता सौवाने आ याय आ याय अह हे मंग मंग कतरित अम नामे पोषे ननवा ओया मंग मंग कतरित अम नामे पोषे ननवा ओया शेका।